98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

You know, मैंने कब realize करा कि मेरा most recent relationship was actually technically over. जब मेरा Uber वाला बंदा मुझसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा था as opposed to my boyfriend. मेरे boyfriend के पास मेरे लिए बिल्कुल time नहीं था, लेकिन Uber वाले भैया day after day, it didn't matter कौन से Uber वाले भैया है, उनके सवाल ही नहीं खत्म होते. कहाँ जाना है, कैसे पेमेंट करोगे, किस ऐप के थ्रू करोगे, कैश क्यों नहीं दे देते, आप कब सोच रहे हैं शादी कब करेंगे, कितने बच्चे चाहते हैं आप जिंदगी में. नावज़ एक भाई साहब, आप जैसे मुझे एंगेज कर रहे हैं, काश मेरे बॉयफ्रेंड ने किया होता, मैं कभी उसे डंप करने के बारे में सोचती भी नहीं. लेकिन अगर आपके भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज अ बिग इशू, देन मे बी कम्युनिकेशन इज दैट रेड फ्लैग जो आपकी अटेंशन ड्रॉ कर रहा है, दैट इट्स टाइम टू रीथिंक द रिलेशनशिप माय डार्लिंग. और अगर आप कंफ्यूज हो बट यू वांट समवन टू हेल्प यू फिगर योर वे आउट, आप मुझे अपना नंबर क्यों नहीं भेजते इंस्टा पर या FB पर, एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशनी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाट यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Michi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, मजा

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है कनिका एंड अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप गानों की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इस हफ्ते के काउंटडाउन में टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं। हमारा 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का कोलैबोरेशन, द ग्लोबल पंजाबी कोलैबोरेशन। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। देन उसके बाद अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी। आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों इनक्रेडिबल गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: The magic of Coke Studio Bharat is back. गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज, रेविटार की प्रोडक्शन, अलोंग विद कुटले खान. ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: जितने नए कोक स्टूडियो के गाने आ रहे हैं उनको सुन के लगता है कि यार वही पुरानी वाली बात लेकिन एक नया अंदाज. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Instagram par jao, mere saath connect karo. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna ho, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Gaana number 9 par humne suna ae Ajnabi. Aisa nahi hota life mein kabhi kabhi koi insaan hota hai jisko hum puri tarah paate bhi nahi hai lekin completely lose bhi nahi karte hai. Wo ek beech ka ek space hai jahan koi naam nahi hai, na usse zyada express kar paate, closure bhi नहीं मिलता. ए अजनबी एग्जैक्टली वही फीलिंग को पकड़ता है. इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, सो कोक स्टूडियो के सारे अंदाज हैं इसमें. एक तरफ कुटले खान, राजस्थान की मिट्टी से निकली हुई आवाज जो सालों से फोक को दुनिया भर में लेकर जा रहे हैं, एंड दूसरी तरफ द पॉप सेंसेशन आदित्य रिखारी. इतना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ कोक स्टूडियो कर सकता है. What I absolutely love about these songs is कि वो किसी भी एक तरह की साउंड को डोमिनेट नहीं करता है. वो हर आर्टिस्ट को अपना स्पेस देता है उस गाने में एग्जिस्ट करने के लिए, अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करने के लिए. जहाँ कुटले खान की मिट्टी से जुड़ी हुई फोक अंदाज आपको इस गाने में सुनाई देगी, वहीं आदित्य रिखारी की पॉप बॉय एनर्जी एक साथ आपको इस गाने में मिलेगी. एंड जब ये बैलेंस सही बैठता है ना, द सॉन्ग हिट्स एग्जैक्टली इन अ हार्ट. और ऐसे ही गाने हमको याद रह जाते हैं, कुछ ना कुछ टेक अवे फैक्टर रह जाता है ऐसे गानों में. पिछले हफ्ते हमने आपको एक धुन सुनाई थी एंड आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है. एक बार फिर से सुनिए. Lots and lots of right answers. It is Duba Duba by Silk Root. Mohit Chauhan की आवाज है. Intro इतना iconic है कि जैसे आपने music सुना, आपने अब भी गाड़ी में चलते हुए पूरे गाने के बारे में बात कर ली. हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. मैं आपको एक और गाना सुनाने वाली हूँ. It's a Coke Studio song. पिछले सीजन का है. एक नया इंडी पॉप सितारा है इस गाने में. इस म्यूजिक को सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है. RJ Kanika on Instagram पर आके मुझे बताओ ये कौन से कोक स्टूडियो गाने का म्यूजिक है. एक छोटा सा हिंट देती हूँ, पिछले ही सीजन का है और इस गाने के जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत मकान गिराए हैं, हुस्न के ऊपर प्यार करना सिखाया है. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी. RJ Kanika पर जल्दी आके बताओ. बैक ऑन द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. करण औजला इक्की का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर फॉर अ रीजन पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 8.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: हाँ जी हाँ जी, गुरु रंधावा बड़े इंटरेस्टिंग वेज में आके वही सेम बात बोल जाते हो आप गाने में। गुरु रंधावा की आवाज पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: कुछ गाने में फुल शोश आप पंक्ति में अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी पूरी अपनी एक ऑडियंस है। दूसरी तरफ एक ऐसी ऑडियंस है जो मेल रोमांस में उस सॉफ्ट एरा को मिस करती है, एंड उस सॉफ्ट एरा के पोस्टर बॉय थे आयुष्मान खुराना। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस शो के जरिए हमने इतने सारे पॉप सॉन्ग्स को चार्ट होते देखा है, लेकिन एक तरह के गाने जो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है वो है लव सॉन्ग्स। नाउ एक तरफ ऐसे गाने हैं जहाँ पे हीरो छाती फाड़ के चांद तारे तोड़ कर लाके प्यार करने की बातें करता है फुल इम्प्रेस मोड में। वहीं दूसरी तरफ देव बीन सॉन्ग्स जहाँ पे मेल पर्सपेक्टिव बहुत सॉफ्ट है, बहुत रियल है, बहुत ऑनेस्ट है। और उस फेज का सबसे स्ट्रॉन्ग फेज थे आयुष्मान खुराना बैक इन द 2010 एरा। रिसेंटली इंस्टाग्राम पर मेरी पूरी फीड भरी हुई है अबाउट बॉयज सेइंग दैट ब्रिंग बैक द ओजी आयुष्मान खुराना सॉफ्ट बॉय एरा। ये सॉफ्ट बॉय क्या था? ये सॉफ्ट बॉय वो था जो ऐसे वाले गाने गाता था।

0: दिस सॉन्ग वॉज सच अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन. ये आयुष्मान खुराना की डेब्यू फिल्म विक्की डोनर से था, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है, उन्होंने ही गाया था. एंड उसके बाद ही वॉज ऑन अ बेल्ट giving us pop songs after pop songs like
1: ambara barasya pani mitti di khushbu mitti di khushbu.
0: उनकी आवाज में, उनके गानों में एक ऑनेस्टी थी, एक वल्नरेबिलिटी थी, जिसको लोग सॉफ्ट एरा बोल रहे हैं. थोड़ा सा हेजिटेशन है, एक ऐसा टोन था जहाँ लड़का लाउड नहीं हो रहा है, छाती नहीं फाड़ रहा है, बस अपना प्यार इजहार कर रहा है. ओवर द टॉप मैस्कुलिनिटी नहीं है, कोई फालतू की परफॉर्मेंस नहीं है. एंड आज 2026 में ज्यादा से ज्यादा सिंगर सॉन्ग राइटर्स उसी ऑनेस्टी को एक्सप्लोर करते हैं. बट आई गेट इट, इंटरनेट हैज बीन आस्किंग फॉर आयुष्मान खुराना. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आयुष्मान खुराना के पीक सॉफ्ट एरा से मेरा सबसे फेवरेट गाना, गाने का नाम है यही हूं मैं. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: मैं खोया तो ढूंढ ना आयो, चुपके से एक ख्वाब जाइयो.

आयुष्मान खुराना की आवाज में दैट वाज यही हूँ मैं, ब्रिंगिंग बैक द सॉफ्ट एरा जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। शायद ये उस फीलिंग को वापस चाहते हैं जहाँ गाना थोड़ा कम परफेक्ट होता है, थोड़ा ज्यादा रियल होता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गुड सॉन्ग। एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आके क्विकली इंडी पॉप क्विज को आंसर करो। आयुष्मान खुराना के इस गाने यही हूँ मैं कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस उनके साथ है, जल्दी जल्दी आके मुझे बताओ। बैक ऑन द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। संजू राठौर का नया नवेला गाना बैंगल्स डेब्यू कर रहा है दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद मिट्टा रॉर का गाना शीशा पिछले हफ्ते से 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन ऊपर जम करके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना एनी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 5।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज इन ट्रेडमार्क दिलजीत दोसांझ स्टाइल का गाना। गाने का नाम है डीलर। छह हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके डीलर वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन दिस शो जिसका नाम है गाना इंडी टॉप 10। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ अभी, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाने सजेस्ट करने हैं, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। आपको वो दोस्त हमेशा याद रहेगा जिसने कोई ऐसा गाना सुना दिया जो आपको अच्छा लगता है आज तक भी। मैं आपकी वही दोस्त बनना चाहती हूँ। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। ये गाने आपको पता है, आपको याद है, बस आपने अभी रीसेंट

0: 11 बार 11 टाइम्स ऑन नंबर 1 मैन शरारत इज रियली स्पेशल, क्योंकि वो गाने जो बार बार वापस आ जाते हैं ना, वो सिर्फ पॉपुलर नहीं होते, वो जरूरी बन जाते हैं. वेल, आई एम डन फॉर दिस एपिसोड. मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20. सो अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट.
1: के साथ only on Mirchi. It's hot.
2: Radio Mirchi, it's hot.
3: Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

Mirchi. It's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स

0: ऑडियो और गो रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची मिर्ची।

गुड मॉर्निंग माय स्लीपी हेड्स, मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ मैं सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। यहां पर कॉफी कड़क है और वाइब्स फुल मिर्चीदार है। अभी टाइम है ट्रैफिक का, डेडलाइंस का, और थोड़ा सा यार इंडिया में होता तो अभी चाय पे गॉसिप कर रहा होता, ये वाले नॉस्टैल्जिया का। बट डोंट यू वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मॉर्निंग का बैकग्राउंड म्यूजिक हूँ, थोड़ा सा फिल्मी, थोड़ा सा फनी एंड फुल ऑन देसी। अच्छा मुझे सच सच बताओ, अभी भी स्नूज का बटन दबा रहे हो या उठ गए हो, ब्रेकफास्ट बना रहे हो या फिर घर से बस निकलने को ही हो? जो कुछ भी कर रहे हो, उठ तो गए हो तो मेक इट वर्थ इट, क्योंकि आज का दिन किक स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, वो भी एकदम मिर्चीदार स्टाइल में। मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ अगले कुछ घंटों तक तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूं। इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो करने के लिए मिर्ची प्रिस ढूंढो, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग ईस्ट कोस्ट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ तुम्हारी मॉर्निंग्स, और आप चलने वाले हम टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए। आज है 6 मई और हिस्ट्री ने आज के दिन क्या किया था। सबसे पहले चलते हैं 1527 में सैक ऑफ रोम, जब सोल्जर्स ने रोम को लूट लिया था। फिर 1889 में द आइकॉनिक आइफिल टावर फाइनली ओपन हुआ पेरिस में, और तब से हर देसी का एक ही ड्रीम है, एक फोटो वहां तो बनता है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1937, हिंडनबर्ग डिजास्टर, एक मैसिव एयरशिप जो सिर्फ 30 सेकंड में क्रैश हो गया। 1954 में लेजेंड रॉजर बैनिस्टर ने पहली बार 4 मिनट माइल ब्रेक किया, 3 मिनट्स 59 सेकंड्स में। और फिर 2002 आया, स्पेसएक्स का जन्म हुआ थैंक्स टू इलॉन मस्क, जिन्होंने कहा ट्रैफिक से बचना है तो चलो मार्स पे चलते हैं। ऑल्सो फन फैक्ट, आज है इंटरनेशनल नो डाइट डे, तो आज गिल्ट फ्री खाओ क्योंकि कैलोरीज आज छुट्टी पर है। और हाँ, 2004 में आज के दिन फ्रेंड्स का लास्ट एपिसोड आया था। We were on a break, still hurts, okay? And that's it for history lessons for today. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। तुम्हें कुछ पता है आज के दिन के बारे में खास, तो मुझे DM करो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS on Instagram and X, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट. मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स. और ये सुनो, यूएस में कंपनी ने अपने 32 किलो के ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रॉपर फ्लाइट का टिकट दिलाया. मतलब आजकल रोबोट्स भी प्रमोशन के चक्कर में बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं. तो सीन हुआ ये कि रोबोट को सीट बेल्ट लगा कर बैठा दिया गया, जैसे कोई सीधा साधा पैसेंजर हो. लेकिन प्लॉट ट्विस्ट हो गया वहां पर. कैबिन क्रू ने बोला, एक्सक्यूज मी, इसकी बैटरी चेक करनी पड़ेगी. और यहाँ पे एंट्री होती है विलेन की, लिथियम बैटरीज जो निकली लीगल लिमिट से ज्यादा. मतलब रोबोट तो उड़ा नहीं, लेकिन उसकी बैटरीज ने प्लेन को पूरी तरह ग्राउंडेड कर दिया. रिजल्ट ये हुआ कि बैटरीज कॉन्फिस्केट हो गई और फ्लाइट एक घंटे से ज्यादा डिले हो गई. इमेजिन द अनाउंसमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर डिलेड बिकॉज रोबोट का सामान ज्यादा हैवी हो गया है. मतलब यार, पहले ह्यूमंस का ओवरवेट लगेज इशू होता था, अब रोबोट्स का भी सेम स्ट्रगल हो गया है. कहीं ना कहीं मुझे किसी देसी मॉम की आवाज आ रही है और वो कह रही है कि देखा, मैंने बोला था लाइट पैकिंग करना चाहिए. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फ्यूचर तो आ गया है, लेकिन क्या हम एक्चुअली फ्यूचर में आ गए हैं या अभी भी हम बहुत सारी चीजों में अटके हुए हैं? क्या लगता है तुमको, मुझे बताओ. मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. कमिंग अप सम मिर्चीदार सॉन्ग्स जस्ट फॉर यू. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट. मेरा नाम है प्रिसिला.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। अब सीधा मौसम का हालचाल जानने के लिए चलते हैं। फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है 62 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील हो रहा है 56 डिग्रीज फारेनहाइट की तरह। और हाँ, लास्ट 24 आवर्स में 0 मिलीमीटर्स का प्रेसिपिटेशन था, लेकिन क्लाउड्स का ड्रामा शुरू हो चुका है। अगले 24 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली 3 मिलीमीटर्स की रेन एक्सपेक्टेड है। मतलब वो हल्का बुल्का रोमांटिक सा बारिश जो होता है, जिसमें बॉलीवुड के कुछ सुपर रोमांटिक स्लोमो सीन्स शूट होते हैं, बस उतना ही। तो तुम अपने कैमरास रेडी रखो एस्थेटिक्स खींचने के लिए फॉर इंस्टाग्राम। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आज के टेम्परेचर रेंज इज 56 डिग्रीज से लेकर 71 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में, और फील होगा 56 से लेकर 66 के बीच में। मतलब आज भी लेयर का प्लेयर बनना तुमको, और साथ साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, और बाहर जाते वक्त SPF 50++++ लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। कंपेरिजन करें तो आज का तापमान जो है वो थोड़ा सा ठंडा है। कल 84 डिग्रीज फारेनहाइट तक गया था, और आज सिर्फ 71 डिग्री फारेनहाइट तक जाने वाला है। और 9 बजे के आसपास विंडी कंडीशंस होने वाली हैं, तो अगर तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा अफलातून टाइप का है ना, तो बी केयरफुल, सेट करते करते नानी याद आ जाएगी। और फाइनल बात यह कि चाय को रखो गर्म, कॉफी को गर्मा गर्म, और ब्रेकफास्ट तैयार कर लो। अभी हम जाने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स सुनने के लिए। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम एंड एक्स, हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। और अभी बने रहो प्रिसला के साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग मेरी देसी फैमिली, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची आवर का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर न्यूज मिलती है तुम्हें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले इंडिया से एक बड़ी पॉलिटिकल हेडलाइन ने दुनिया का टेंशन ग्रैब किया है। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी की वेस्ट बंगाल विक्ट्री को ग्लोबल मीडिया ने हिस्टोरिक मैंडेट कहा है। मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि बॉस ये चल क्या रहा है यहाँ पर। नंबर 2 पर सेकंड अपडेट, येट अगेन फ्रॉम इंडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं वेस्ट बंगाल के। पार्टी मीटिंग फ्राइडे को है और स्वेयरिंग इन भी जल्दी ही हो सकता है। मीनवाइल करंट सीएम ममता बनर्जी ने रिजाइन करने से मना कर दिया है। मतलब पॉलिटिक्स फुल ऑन चल रही है वेस्ट बंगाल में। और नंबर 3 पर अ बिट सेंसिटिव अपडेट, एक यूएस लीगल केस में एक बैंकर चिरायु राणा ने लॉसूट रीफाइल किया है अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव। Allegations include inappropriate behavior and uncomfortable situation during personal interactions. Case फिलहाल legal process में है, तो facts और clarities आगे आती रहेंगी। And that's it for Mirchi Hour का 3। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। मुझसे connect करो Insta और X पर, मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS। And WhatsApp पर मेरा number है 9033Mirchi, that's 9033647244। Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और फिलहाल चाय पीते पीते ये बात सुनो, लेजेंडरी नेचुरलिस्ट डेविड एटनबरा जस्ट टर्न्ड 100। यस, सेंचुरी मार दी उन्होंने बिना क्रिकेट खेले। फ्रॉम लाइफ ऑन अर्थ टू प्लैनेट अर्थ, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज ने हमें जंगल, ओशंस और वो क्यूट बेबी पेंगुइन्स तक से इमोशनली कनेक्ट करा दिया था। लोग ना अपनी लाइफ में रिलेटिव्स का नाम भूल सकते हैं, लेकिन दे कांट फॉरगेट दैट वन टर्टल सीन। उनके जो काम है ना, उन्होंने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया बल्कि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस, इन सब के बारे में दुनिया को सीरियसली सोचने पर मजबूर किया है। और उन्होंने कम से कम हमें ये सिखाया कि प्लैनेट का ख्याल रखना इट्स नॉट एक्स्ट्रा, इट्स एसेंशियल। थोड़ा सा लेस प्लास्टिक, थोड़ा सा मोर रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट अर्थ। आज उनके ऑनर में स्पेशल शोज, इवेंट्स हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में। और हाँ, अगर तुमको किसी की लाइफ में हीरो बनना है, स्पेशली हेल्थ केयर फील्ड में, तो एम्स एजुकेशन, द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज एट 9082220002 पर कॉल करो। आई रिपीट द नंबर 9082220002। या फिर तुम विजिट कर सकते हो aimseducation.edu, दैट्स aimseducation.edu। क्योंकि रियल सुपर हीरोज ना स्क्रब्स पहनते हैं, केप्स भी पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं। और बातें मेरी कंटिन्यू करेंगी, लेकिन कुछ मिर्चीदार बैंगर्स के बाद। तब तक तुम जाओ मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करो। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल चिपक गए हैं बैठने का, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग माई बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड टाइम फॉर सेलिब्रेशन. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू. हाँ हाँ, ऑफिस जाते हुए सीक्रेटली सोच रहे हो ना कि आज काम कम रहे तो अच्छा है. बट गेस वॉट, आज सिर्फ तुम केक नहीं शेयर कर रहे हो बल्कि शेयर कर रहे हो अपना बर्थडे विद सम लेजेंड लेवल पीपल लाइक जॉर्ज क्लूनी, जो आज के दिन इस धरती पर प्रकट हुए थे एग्जैक्टली लाइक यू. फिर वी हैव सिगमंड फ्रॉयड, जिन्होंने दुनिया को समझाया कि हम इतना ओवरथिंक क्यों करते हैं यार. साथ में वी गॉट द एक्सप्लोरर रॉबर्ट पियरी एंड फ्रेंच एक्ट्रेस एंड पारियोड. स्पोर्ट्स लवर्स, आज है डैनी एल्विश का हैप्पी वाला बर्थडे और यंग टैलेंट नोआ गैल्विन भी आज ही इस धरती पर आए थे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी गॉट राइटर गैस्टन लेरू. मतलब सिंपल है यार, आज के दिन जो भी इस धरती पर आए हैं ना, वो लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड, काफी ज्यादा आइकॉनिक और काफी ज्यादा एक्स्ट्रा होते हैं. फिलहाल तुम एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ केक खाना मेरे यानी कि प्रिसला की तरफ से, और मुझे अपने बर्थडे शाउटआउट भेज सकते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर. एंड व्हाट्सएप करना है तो नंबर है 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अब बारी आ चुकी है गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट जानने की।
1: आज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,565। जी हाँ, $4,565 पट रहे हैं। उसके साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, मार्केट में डिप है और एक एंट्री पॉइंट बनता है। जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा लेट किया, आज उनको एक एंट्री पॉइंट बनती है $4,565 पर ट्राई आउंस। चाहे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी लेनी हो, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड प्लैटिनम रिंग में सेट। इस मदर्स डे की सेलिब्रेशन के, मदर्स डे की ऑफर्स के लिए राज ज्वेल्स विजिट करें और 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में 12 इंस्टॉलमेंट के साथ हमारी फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेल करें। जहां गोल्ड ज्वेलरी आज घर लेके जाएं और 12 किश्तों में पैसे दें बिना किसी इंटरेस्ट के। आइए मिलके इन्वेस्ट करें गोल्ड में विद rajjewels.com। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
0: And there you have it, गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट तुमने सुना अभी के अभी मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। नाउ लेट्स हेड स्ट्रेट इनटू मिर्चीदार म्यूजिक। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द लास्ट आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मिर्ची आवर का 3। तो पहली खबर यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने अराउंड 15,000 पाकिस्तानी नेशनल्स को डिपोर्ट किया है रिसेंटली। इसका कनेक्शन बताया जा रहा है सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड थोड़ा सा स्ट्रेन्ड टाइज से। नंबर टू पर यूएस ने अनाउंस किया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग ऑपरेशन ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। एंड नंबर थ्री पर इंडियन ओरिजिन टेकी आर्च राव ने एक सेटअप के थ्रू मिनी डेटा सेंटर्स लॉन्च किए हैं होम्स और स्मॉल शॉप्स के लिए विद सपोर्ट फ्रॉम एनविडिया। मतलब फ्यूचर में तुम्हारे घर के पास में एक मिनी सर्वर पावर स्टेशन हो सकता है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। एंड नाउ लेट्स हेड स्ट्रेट टू मिर्ची दैट बैंगर्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड ये है राशि जोन नंबर वन। यहां पर पहली छह राशियों को डिकोड करेंगे हम ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन
0: एरीज यानी कि मेष राशि, आज किसी की एडवाइस पर ब्लाइंडली मत जाना। गट फीलिंग नाम की कोई चीज होती है, ट्रस्ट करो उसे। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, करियर जोन में रियलिटी चेक आने वाला है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन गूगल मैप्स भी खोल कर रखो। लकी कलर फॉर यू इज क्रिस्टल व्हाइट, लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मूड थोड़ा सा ऑफ है, लेकिन टेंशन नहीं, नेक्स्ट फ्यू डेज में कमबैक काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज ग्रीन कलर, लकी नंबर इज 11। कैंसर यानी कर्क राशि, कोई तुमसे कुछ छुपा रहा था पर अब पता चल गया, तो चिल मारो यार, हर बात पे रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। लकी कलर इज कोबाल्ट, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, आज बोलने से ज्यादा करके दिखाओ, एक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन वर्ड्स, समझे बॉस। लकी कलर फॉर यू इज रॉयल पर्पल, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, ओवर थिंकिंग अलर्ट, थोड़ा सा स्लो डाउन करो, टेक अ ब्रेक, इवन परफेक्शनिस्ट नीड अ नैप। लकी कलर फॉर यू इज मिंट कलर, लकी नंबर 6। And that's it for your Rashi Zone number 1. अगली छह राशियों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक तुम ये मिर्ची दर बैंगर सुनो और मुझे जाकर फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। टेल मी व्हाट्स योर राशि एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में ऑफ कोर्स योर होस्ट। और अब बातें करने वाले हम राशि जोन नंबर टू में, बाकी बची राशियों की।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी तुला राशि, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज पर रिग्रेट हो रहा है। मूव ऑन यार, रिवाइंड बटन लाइफ में होता ही नहीं है। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहो, अपनी वाइब खुद स्ट्रॉन्ग बनाओ, समझे। लकी कलर फॉर यू इज डीप ग्रीन, लकी नंबर इज 3। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, बोलने से पहले फैक्ट्स चेक कर लो वरना ग्रुप चैट में रोस्ट हो जाओगे। लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो, लकी नंबर इज 5। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जल्दी जल्दी करने वाले लोग अपना मुंह जला लेते हैं अक्सर। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 8। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, करियर गोल्स रखो, वीक प्लान्स इज इक्वल टू दूसरों का एडवांटेज, समझे कुछ, स्टे शार्प। लकी कलर फॉर यू इज एक्वा ग्रीन, लकी नंबर इज 1। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस यानी मीन राशि, आज थोड़ा सा स्लो स्टार्ट है लेकिन प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रखोगे तो फ्यूचर अपने आप बॉस मोड में आ जाएगा। लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर, लकी नंबर इज 1। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन नंबर 2 मेरे यानी कि प्रिसला के साथ। तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी जाकर देखो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, एक्स अकाउंट, और जाकर उसे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

शो खत्म होने वाला है, पैसा खत्म होने वाला है। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब रैप अप का टाइम हो ही चुका है, तो जाने से पहले क्रिकेट के बारे में बात करके जाने वाली हूं। तो आईपीएल 2026 प्लेऑफ्स का फुल स्केड्यूल आ चुका है। क्वालिफायर 1 होगा धर्मशाला में 26 मई को, एलिमिनेटर न्यू चंडीगढ़ में होगा 27 मई को, और क्वालिफायर 2 भी वहीं 29 मई को होने वाला है। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, पहले जो फिनाले था वो बेंगलुरु में होने वाला था, अब वहां नहीं होगा, अहमदाबाद में होने वाला है 31 मई को। हाँ जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने होस्टिंग ले ली है इंस्टेड ऑफ दी एम चिन्नस्वामी स्टेडियम। रीजन, कुछ लोकल रिक्वायरमेंट्स और क्रिकेट वाले इश्यूज हैं, वही इधर उधर की बातें, हमें क्या ही करना है, हम कौन सा जाने वाले देखने के लिए। लेकिन उस मैच को टीवी पर जरूर देखने वाले हो। ऑनेस्टली, वेन्यू चेंज हो या पिच चेंज, देसी फैंस का एक्साइटमेंट सेम ही रहता है, सुपर मिर्चीदार। और इसी नोट पर मुझे बताओ, फाइनल में तुम्हारे हिसाब से कौन जीतने वाला है? फटाफट से मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी के लिए टाटा बाय बाय है, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी। तब तक के लिए तुम रहो खुश, मिर्चीदार, एंड बी गुड। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड़ किन खालिया गुड़ वाली चा किन पीती
1: वो
0: जिदा नाला किन खिचया
1: हाँ?
0: खिच के मर किन से।

0: कल ना मुझे लाइफ का सर्कल पूरा होता हुआ महसूस हुआ।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Virgie. आपको याद है बचपन में हम हमारे पड़ोसियों की बेल बजाकर भागने की आदत रखा करते थे? Well, guess what? कल बच्चों ने मेरे घर की बेल बजाई और भाग गए। एंड नो, मुझे गुस्सा नहीं आया इस बात पर, क्योंकि व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये बिल्डिंग के बच्चों की कारिस्तानी है तो मुझे हंसी आ गई यार, क्योंकि यही तो हमने भी किया है बचपन में। डोंट यू रिमेम्बर, ये स्विचेस और बेल्स में जाने क्या जादू हुआ करता था यार, कि इन्हें दबाना जरूरी सा लगता था। और कल मुझे इसी तरीके से रियलाइज हो गया कि भाई लाइफ इज अ फुल सर्कल। आज मैं इन हरकतों पर गुस्सा करती अच्छी नहीं लगूंगी, क्योंकि ये तो वही बात हुई ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, लेकिन फिलहाल ये बिल्ली चली मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने को। एंड एज अ 90s किड, मैं अपनी इन हरकतों की वजह आपको बता दूं क्या थी। दिल। जी हाँ, दिल। यू स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: छैया छैया सिर्फ एक गाना नहीं था, इट वॉज अ लैंग्वेज, इट वॉज एन एंथम, इट वॉज ओमनी प्रेजेंट एंड स्टिल इज, जब से दिल से रिलीज्ड।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम इंडियंस की रगों में ना बॉलीवुड और क्रिकेट दौड़ता है। इस बात पर ठप्पा तब लग जाता है जहाँ कहीं छैया छैया बजता है ना, और उस जगह पर मौजूद सभी लोग इस गाने को गुनगुनाने लगते हैं। बट डिड यू नो, इस गाने की शूट के लिए शाहरुख खान ने सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। बट ऑन दी अदर हैंड, मलाइका अरोड़ा का बैलेंस बार बार आउट होने की वजह से उन्हें कमर से एक रस्सी बांधकर ट्रेन से अटैच कर दिया गया था। और जब गाना पूरा शूट हो गया तो उनकी कमर पर घाव ही घाव थे। एंड वेल, मलाइका अरोड़ा के अलावा भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था फॉर दिस सॉन्ग, लेकिन उनमें से शिल्पा शेट्टी आई रिमेम्बर इज वन एक्टर जिन्होंने मना कर दिया था, सेइंग कि उनको डर लगता है कि वो ट्रेन की छत पे चढ़कर ये शूट करें, और इसीलिए उन्होंने इस गाने के लिए मना कर दिया था। लेकिन इस गाने में सबकी मेहनत रंग लाई व्हेन बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए इस गाने को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: द सोल्जर वाज सपोज्ड टू बी प्रीति'स डेब्यू मूवी, लेकिन फिर हालातों के चलते दिल से उनकी डेब्यू मूवी बन गई।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। सो सोल्जर और दिल से की शूट आसपास ही खत्म हुई थी, लेकिन दिल से कुछ महीने पहले ही रिलीज हो गई और वही उनकी डेब्यू कहलाने लगी। हालांकि सोल्जर वाज द वन जो पहले रिलीज होनी थी। ऑल्सो मणि रत्नम सर की ये थर्ड हिंदी मूवी थी, लेकिन इस मूवी के म्यूजिक पर बड़ी ही बारीकी से काम हुआ है। एंड भले ही मूवी वाजंट अ हिट, बट द होल एल्बम ऑफ द फिल्म वाज अ सुपर डुपर हिट। हो भी क्यों ना, रहमान सर का जो म्यूजिक था। एंड यू नो, इन द सॉन्ग दिल से रे गिटार किसने प्ले किया है? इंग्लिश रॉक बैंड पिंक फ्लॉयड के गाय प्रैट ने। वो कहते हैं ना कि म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, हेंस प्रूव्ड। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज तो गम के नाम पर लोग स्टिकी ईयू करते हैं, लेकिन हम 90s किड्स फेविकॉल में थेरेपी ढूंढ लिया करते थे।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। 90s के दिमाग थोड़े खुराफाती हुआ करते थे माय लॉर्ड, क्योंकि जब भी फ्री का टाइम होता ना तो चुप बैठना तो बड़ा नागवारा था हमें। तो हम फेविकॉल लेकर पूरे हाथ पर उसे मेहंदी की तरह लगाते, फिर उसे जरा सा सूखने के बाद उसे मास्क की तरह उतार देते और हाथों का पूरा छाप फेविकॉल का बन के निकल के आता था और हमारी पूरी फिंगरप्रिंट्स उस पर छप जाया करती थी यार। एंड दिस यूज्ड टू फील सो गुड एंड लाइट टू मी, एक्चुअली इट फेल्ट लाइक थेरेपी। वो अलग बात है कि तब थेरेपी क्या होती है ये नहीं पता था, लेकिन आज अगर इन रेट्रोस्पेक्ट चीजों को देखो ना तो तब क्या फील होता था आज उसके लिए वोकैबुलरी मुझे मिल गई है। हमने तो इस टाइम पास को वैसे कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन आई वुड लाइक टू नो कि क्या आपके पास भी यही टाइम पास हुआ करता था या इससे भी कुछ बेहतर, बताओ मुझे। या तो डीएम करो या तो वॉइस नोट छोड़ो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मिर्ची सारा। इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: सोनू निगम की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म दिल चाहता है। और पता है ये वो वाला जोन है जिसमें ना ज्यादा लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स हु वांट्स टू गो थ्रू अ ब्रेकअप एंड देन लिसन टू दिस सॉन्ग, लेकिन इवेंचुअली हम पड़ ही जाते हैं यार इस जाल में, हम हाँ कहें या ना कहें इस चीज को। मगर एक और बात बता दूं आपको, एक जोन ऐसा है जिसमें कि हम चाहते हैं कि हम तन्हाई में हो, पता है वो कौन सा जोन होता है? जब हमने पिज्जा ऑर्डर किया होता है, हाँ तब हम चाहते हैं कि हमारे आसपास कोई ना हो और पूरा का पूरा पिज्जा हम अकेले हड़प कर जाएं।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब अकेले अकेले नहीं, दुकेले काम करने की बारी है, क्योंकि मैं सवाल पूछूंगी तो आप जवाब दोगे। और आज का मान ना मान करो गानों की पहचान के लिए दो गाने मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, जो कि है कुछ यूं।

अब आपने बस इतना करना है कि डीएम करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेजना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। और स्टे ट्यून्ड रहो टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अब जिस गाने की बात मैं करने जा रही हूँ ना, इस गाने के लिए देर आर नो पॉइंट्स टू गेस कि ये धुन कहाँ से कॉपी की गई है।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and I'm talking about करीब मूवी का ये गाना।
3: तेरा गुस्सा आय हाय, ये गुस्सा बाय बाय,
1: जिसको ऑफ कोर्स कंपोज किया है दी ग्रेट अन्नू मलिक साहब ने। और यार, इस गाने को सुनने के बाद आई डोंट थिंक कि हमें ये गेस करने की जरूरत है कि ये कहां से कॉपी किया गया है, क्योंकि यार ये तो हर बर्थडे पार्टी में हम गाते ही गाते हैं। इस गाने की धुन इज इंस्पायर्ड और रादर कॉपीड फ्रॉम द गाना हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब यार, अन्नू जी का जो कॉन्फिडेंस है ना, उसे दाद नहीं पूरी 32 ही देनी पड़ेगी, बाय गॉड। चलो जी, ये गाना तो मैं आपको नहीं सुनाने जा रही हूँ, लेकिन हाँ, इसी फिल्म का दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेरे यार की शादी है मूवी के लिए यश राज की पहली प्रेफरेंस वाज अमीषा पटेल।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। लेकिन जब अमीषा को रोल ऑफर किया गया तो वो वन फिल्म वंडर बनी हुई थी। कहो ना प्यारे के रिलीज के बाद उनके सुर्खाब के पर लग गए थे यार, और वो सुपरस्टार बन गई थी। और उन्होंने फिल्म को ना बोल दिया क्योंकि वो न्यू कमर्स के साथ काम नहीं करना चाहती थी, जिस पर उदय चोपड़ा को बड़ा गुस्सा आया। वो इतने नाराज हुए कि ही डिसाइडेड कि अब अमीषा पटेल को यशराज बैनर्स के लिए कभी कास्ट नहीं करेंगे। लेकिन यू नेवर से नेवर राइट। Eventually हुआ ये कि उन्हें थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में कास्ट किया गया, जहां उन्होंने थोड़ा ही काम किया और उनका रोल जो उन्होंने प्ले किया था वो शायद आज तक किसी को भी याद नहीं है। बट हाँ, लेजी लम्हे गाना और उनकी परफॉर्मेंस उस गाने में वो याद रह गई। लेकिन हाँ, उन्होंने उससे ज्यादा काम किया था उस फिल्म में। वो जो एक कहावत है ना, वो यहाँ पे एकदम एप्ट होती है कि लौट के बुद्धू घर को आए। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: डियर घड़ी,
1: यादों को चिट्ठी।
0: आज इस नाम को लोग बड़े ही प्रैक्टिकली ले लेते हैं। कोई कपड़ों की तय की तो कुछ हाथ में पहनने वाली घड़ी बतला देते हैं, लेकिन तुम तो इंस्टेंट घड़ी थी जो हम अपने हाथ पर बटका बनाकर दांतों के बाइट से डिजाइन किया करते थे। आज की महंगी से महंगी घड़ियों के डिजाइन भी इसके आगे पानी भरा करते हैं। आज लोग इंसान के बाइट को पॉइजनस बोलते हैं, और तब हम दोस्त एक दूसरे के हाथों पर अपने दांतों से ये डिजाइन दे दिया करते थे और कहते थे कि देख कितना सुंदर लग रहा है ना। तुम्हें पता है, एकदम से तुम्हारी याद आई तो तुम्हें चिट्ठी लिखने से पहले मैंने अपने हाथों पर तुम्हें अपने दांतों से छाप दिया था। तुम्हें इंस्टेंट टैटू कहें या घड़ी, जो भी तुम्हें नाम दे, एक बात तो पक्की है, मैंने कई बार आज भी अपने हाथों पर तुम्हें बनाकर अपने बचपन के प्यार को ना पाए। तुम्हें याद करती तुम्हारी डिजाइनर सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: अलका याग्निक, कमाल खान, कुमार सानू, नितिन मुकेश की आवाज में दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इज वो ट्रैक जो हर उस लड़की के लिए हम गा सकते हैं जिसका नाम प्रिया है। इनफैक्ट हर वो लड़की जिसका नाम प्रिया है वो भी खुश हो गई होगी कि भले ही मेरा नाम बड़ा कॉमन सा हो गया और हर तीसरी लड़की का नाम प्रिया है, लेकिन कितनों के नाम पे कोई गाना लिखा गया है। सो दिस गाना कम्स एज अ गिफ्ट टू ऑल दोज गर्ल्स जिनका नाम प्रिया है। और वैसे तो मूवी का टाइटल कहीं प्यार ना हो जाए है, लेकिन ये डाउट ही नहीं था जब इस मूवी के एल्बम को सुना गया कि प्यार होगा कि नहीं होगा। ये तो डेफिनेट था कि प्यार तो होगा ही। इस मूवी के गाने हैं इतने खूबसूरत, एंड आपको एक बात बता दूं, ये गाने कंपोज किए हैं हिमेश रेशमिया ने। इन्हें देखकर कौन कहेगा कि ये इतनी पुरानी मूली है बॉलीवुड की खेत की। वाकई में यार हिमेश ने अपने आप को आज तक भी कितना मेंटेन करके रखा हुआ है। नहीं चलो, इधर उधर की बातें बहुत हुई, अभी तो फिलहाल यखनी पुलाव और शाही टुकड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं यार। तो मैं चली, मैं उन्हें ज्यादा वेट नहीं करवा सकती हूँ, लेकिन आपको भी ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगी। मिलूंगी आपसे सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे। और बाकी यहाँ के अलावा आप मुझे ढूंढ सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।

इस एक फिल्म के पीछे ये फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, जीना तमान एंड आशा पारेख, सब ना बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। लेकिन फिर एक फिल्म ऐसी आई जिसकी वजह से शर्मिला टैगोर और आशा पारेख के बीच में ना जय हो गई, वो भी पब्लिकली। पब्लिकली बोले तो मतलब सबके सामने नहीं, लेकिन हाँ फिल्म मैगजीन्स ने इनके बारे में जम करके लिखा। कभी कोई फिल्म मैगजीन आशा पारेख का व्यू लिख रही थी और कभी कोई फिल्म मैगजीन एक्चुअली में शर्मिला टैगोर का पीओवी लिख रही थी। वेल, कौन सी थी ये फिल्म अभी आपको बताऊंगी, वापस श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शर्मिला टैगोर का कहना था कि वो फर्स्ट चॉइस थी फॉर दिस फिल्म, और उसके बाद जब उन्होंने एक फिल्म मैगजीन को इंटरव्यू दिया और यही बात कोट कर दी तो भाई घमासान मच गया दो दोस्तों के बीच में, क्योंकि आशा पारेख का कहना था कि वो कभी भी सेकंड चॉइस नहीं थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म कटी पतंग, जिसमें थे राजेश खन्ना जी, शक्ति सामंत ने ये फिल्म बनाई थी। एंड कहते हैं कि भाई शर्मिला टैगोर ने कहा कि ये फिल्म सबसे पहले उनके पास गई थी, शी डिनाइड डूइंग द फिल्म क्योंकि शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, तो फिर वो ये फिल्म कर नहीं पाई एंड इसीलिए फिर इसका रोल गया आशा पारेख को। आशा पारेख ने जब ये आर्टिकल पढ़ा एक फिल्म मैगजीन में, उन्होंने उसी मैगजीन को जाकर के फिर से इंटरव्यू दिया और कहा कि ऐसा कभी भी नहीं था, वो पहली चॉइस थी, शक्ति सामंत उनके पास आए थे ये रोल लेकर के। वेल लेटर ऑन शक्ति सामंत ने ये बात एक्सेप्ट भी की कि उन्होंने सबसे पहले इस रोल के लिए अप्रोच किया था शर्मिला टैगोर को। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कटी पतंग की बातें चलेंगी आज, और इस फिल्म के गाने भी होंगे, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पता है मुझे उस जमाने के गानों की एक बात इतनी खास लगती थी कि गानों में ना सेट्स या फिर विजुअल्स हीरो नहीं होते थे, बल्कि हीरो होते थे लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉन्ग, द हीरो एंड द हीरोइन. अदरवाइज विजुअल्स वर सो सिंपल एंड सो सूदिंग टू आईज. तो अगला जो गाना मैं कटी पतंग का आपको सुनाने वाली हूँ ना, उसमें राजेश खन्ना एकदम नॉर्मल सा कोट पहने हुए हैं, व्हाइट साड़ी में क्लैड हैं आशा पारेख. और आजकल जो विंग लाइनर हम लगाते हैं ना, ये आशा पारेख से ही शुरू हुआ था. मेकअप के नाम पे उन्होंने सिर्फ विंग लाइनर लगाया हुआ है. और उस टाइम पे 90s में चला करती थी ना, पिकनिक मनाते थे हम जाकर के किसी भी ग्राउंड में बैठ जाते थे. सो आशा पारेख एक ग्राउंड में है अपनी सहेलियों के साथ, पिकनिक मन रही है और राजेश खन्ना आने काका उनके इर्द गिर्द घूम करके बस कह रहे हैं ये शाम मस्तानी. ये गाना कमिंग योर वे किशोरदा की आवाज, ओनली ऑन पुरानी जीन्स. मैं हूँ श्रेया. फेसबुक और इंस्टा पे यू कैन रीच आउट टू मी, आरजे श्रेया विद लव. दैट्स आरजे SHREYA विद लव इज माय हैंडल.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पास ढेर सारे रोल्स आते थे। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म कटी पतंग की, राजेश खन्ना एंड आशा पारेख की ये फिल्म जो कि शक्ति सामंत ने बनाई थी। वेल, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस फिल्म में रोल करने के बाद फाइनली उनका ड्रीम फुलफिल होगा। भाई शोले के बाद तो हर कोई गब्बर बनना चाहता था, तो बस प्रेम चोपड़ा इसी लगन में लगे रहते थे कि एक बार वो किसी तरह विलेन का रोल ऐसे क्रैक करें कि हर कोई उनको विलेन के रोल में एक्सेप्ट कर ले। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड फ्रॉम द फिल्म कटी पतंग। इसके बाद बिंदु और प्रेम चोपड़ा के पास इतने सारे रोल्स आते थे कि फिल्में साइन करते करते दोनों थक जाते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया, तो बस कहीं भी मत जाना।

उस टाइम पे ना विलन्स का भी मेजर रोल होता था हिंदी इंडस्ट्री। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड प्रेम चोपड़ा काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि वो एज अ फेमस विलन एस्टैब्लिश हो जाए, जिससे कि उनके पास फिल्मों के रोल आए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। बट आफ्टर दिस फिल्म प्रेम चोपड़ा और बिंदु जी

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

कश्यप पारेख फिल्में तो बहुत सारी कर रही थी, लेकिन कोई भी फिल्म उनका ड्रीम, उनका सपना नहीं पूरा कर पा रही थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आशा पारेख की बात कर रही हूँ, यानी कटी पतंग की बात कर रही हूँ। वेल, आशा पारेख बैग्ड फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म कटी पतंग। आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने, ढेर सारे विद मी श्रेया। और सुनो, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे आराम से कह सकते हो, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव इज माई हैंडल।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म कटी पतंग टुडे। वेल, शक्ति सामंत ने डायरेक्ट की थी, काका यानी राजेश खन्ना थे एंड इसमें थी आशा पारेख। अच्छा, आराधना इससे पहले रिलीज हो चुकी थी शक्ति सर की, सो ही डिसाइडेड कि क्योंकि आराधना के गाने इतने सुपर डुपर हिट हुए थे, ही डिसाइडेड कि वो अपनी म्यूजिक टीम सेम रखेंगे, यानी आरटी बर्मन साहब का म्यूजिक रहेगा, आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स रहेंगे और किशोर दा ही सारे गाने जो हैं वो गाएंगे फॉर काका यानी राजेश खन्ना। अब भाई राजेश खन्ना पे जितने भी पिक्चराइज गाने थे वो किशोरदा कटी पतंग के लिए तो गा ही रहे थे, लेकिन एक ऐसा गाना हुआ जिसमें किशोरदा आउट ऑफ इंडिया थे और शक्ति सामंत को ये गाना पिक्चराइज करना था, शूट करना था, तो फिर उन्होंने मुकेश जी को बुलाया और मुकेश जी ने ये खूबसूरत गाना गाया। वेल, इस गाने में एक बोट है, उस बोट पे काका है, उस बोट पे खूबसूरत ब्यूटीफुल लुकिंग आशा पारेख है वो एंड क्लैड इन अ वाइट साड़ी और उनका वो विंग लाइनर भी लगा हुआ है और राजेश खन्ना नाव चला रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नैनीताल की नैनी झील का यू नो सीन है। इसी गाने की तरफ आपको ले जाते हुए मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस में आप श्रेया के साथ और बैक टू बैक आज कटी पतंग फिल्म की बात हो रही है। वेल, अगला जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, ये गाना एक्चुअली में एक बंगाली गाने से इंस्पायर्ड था। आर डी बर्मन साहब ने इस गाने को कंपोज किया था, आनंद बख्शी साहब ने इसको लिखा था और पियानो पे बैठे होते हैं काका यानी राजेश खन्ना और आशा पारेख ना उस कश्मकश में है कि अब वो एक विडो हो चुकी हैं, वो इस लड़के की बातों में या इसकी मोहब्बत में नहीं आ सकती, पर दिल कहाँ मानता है ये उनके चेहरे पे साफ दिखता है। सो कहते हैं कि शक्ति सामंत ने जब ये सब्जेक्ट उठाया था तो उन्हें लगा था कि शायद इंडियन ऑडियंस इस बात को एक्सेप्ट ना करेगी, बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था। बट देन ही रियलाइज्ड कि कुछ अलग करना पड़ेगा लोगों को, समाज को, जो कुछ ऐसी रीतियाँ हैं जो यू नो शुड बी चेंज्ड फॉर बेटरमेंट, वो दिखानी पड़ेगी। और तब उन्होंने बनाई कटी पतंग। इट वॉज बेस्ड ऑन अ नॉवल एज वेल। पुरानी जीन्स पे प्यार दीवाना होता है कमिंग अप राइट नेक्स्ट फ्रॉम दिस फिल्म कटी पतंग। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: बिंदु जी को जब डायरेक्टर शक्ति सामंत ने ये बताया कि उन्हें एक डांस नंबर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो बस वो काफी नर्वस हो गई थी, लेकिन वो चाहती थी कि ए ग्रेड फिल्मों में उन्हें किसी तरह एक ओपनिंग मिल जाए। वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती थी, तो उन्होंने इस फिल्म में डांस नंबर करने के लिए अग्री कर लिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और मैं बात कर रही हूँ कटी पतंग की, एंड द डायरेक्टर जिन्होंने भाई बिंदु जी को ये बात बोली थी वो शक्ति सामंत, द मैन हु डायरेक्टेड दिस ब्यूटिफुल फिल्म कटी पतंग। लेकिन जब बिंदु जी को ये ब्रीफ मिली कि उन्हें एक कैबरे परफॉर्मेंस देनी है, और वो काफी नर्वस हो गई। वेल, जब ये गाना सामने आया तो लोग तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल भर देते थे। बिंदु जी का ब्यूटिफुल एंड वेरी हॉट परफॉर्मेंस इन द सॉन्ग मेरा नाम है शबनम। पंचम दाया ने आरडी बर्मन साहब खुद उतरे थे मैदान में गाने के लिए दिस सॉन्ग विद आशा ताई। इस गाने के बाद बिंदु जी को ढेर सारे ऑफर्स आने लगे। यही गाना कमिंग योर वे। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।
1: शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो।

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात भर शनी बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

0: सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ एंड आज कटी पतंग की बातें चल रही हैं और इस फिल्म के गाने. वेल, मुझे लगता है कि उस टाइम के लिए बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था. आशा पारेख जो कि एक विडो थी, वो प्यार तो करती हैं राजेश खन्ना से, लेकिन वो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती. राजेश खन्ना जो उनसे बहुत प्यार करते हैं समाज के चक्कर में, वो अपनी बातें एक्सप्रेस तो करते हैं पर तो उस टाइम के लिए बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था. वेल, इस फिल्म के बहुत खूबसूरत गाने हैं जिनको आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लिखने वाले हैं आनंद बख्शी और गाए हैं मोस्ट ऑफ देम किशोर दा ने. सो अगला जो गाना है, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री का पहला गाना था जिसमें ब्रेकअप पे जुबान से भले ही कड़वे शब्द निकल रहे हों हीरो के यानी राजेश खन्ना के, पर जब आप इस गाने का पिक्चराइजेशन देखोगे तो मुस्कुरा रहे हैं और अपना गम ना मुस्कुराहट से निकालते जा रहे हैं. ये जो मोहब्बत है, कमिंग अप राइट नेक्स्ट. मैं हूं श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

होली पे ये गाना ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और मुझे लगता है कि आर डी बर्मन साहब ने और आनंद बख्शी साहब ने किशोर दा ने मिलकर के ना आपको हमेशा के लिए होली का एक गाना दे दिया इन द फिल्म कटी पतंग। वेल आज इसी फिल्म की बातें हो रही हैं, इसी फिल्म के गाने हो रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप होली सेलिब्रेट करो और ये गाना ना हो। वेल इस गाने में ना काका यानी राजेश खन्ना कोशिश तो करते हैं कि वो आशा पारेख को कलर लगाएं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आशा पारेख एक विडो दिखाई गई हैं उस ज़माने की, तो ये करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उनको छेड़ते हुए वो बाकी सबको कलर लगा देते हैं। आज ना छोड़ेंगे बस, समझो ली। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: कोई।
1: आरटी बर्मन साहब और आनंद बख्शी ने मुझे लगता है कि अपने सारे मेलोडीज का जो बटुआ होता है ना वो खाली कर दिया था इन दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ कटी पतंग की बात हो रही है और मैं बातें कम इस फिल्म के गाने ज़्यादा सुना रही हूँ। वेल जनरली ऑल ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म वर पिक्चराइज्ड ऑन ऑफकोर्स काका यानी राजेश खन्ना एंड फिल्म की हीरोइन आशा पारे, लेकिन ज़्यादातर गाने जो है ना लाइक 10 में से जो 9 गाने नहीं 8 गाने हैं वो किशोर दा ने गाए हैं या फिर मुकेश जी ने गाए हैं, यानी दे आर पिक्चराइज्ड ऑन काका। लेकिन एक गाना जो कि लता जी ने गाया है जो पूरी फिल्म की थीम पे है कि कैसे आशा पारेख जो एक विडो हैं, बचपन में ही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से यू नो वो एक विडो हो जाती हैं, वो चाहती तो हैं कि उनकी जिंदगी फुल पतंग की तरह उड़े, लेकिन क्योंकि समाज में ऐसे रीति रिवाज हैं कि उनकी जिंदगी कटी पतंग हो गई है। एंड इस गाने में ना राजेश खन्ना एक कमरे में बंद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दूर हो जाएं आशा पारेख से, वो उनसे प्यार ना कर बैठे, पर ऐसा होता कहाँ है। दिल और प्यार उस इंसान को ना उसका कास्ट रिलीजन उसकी सिचुएशन देख करके नहीं आता, ये तो बस आ जाता है सामने वाले पे प्यार। यही गाना कमिंग योर वे। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, बट ऐसे कहाँ जाती हूँ, हाईवे पे आपको लेके जाऊंगी। वेल, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों पे है जो चाहते हैं कि उनकी जाना जो है वो थोड़ी देर और रुक जाए, उनसे दो बातें और करके जाए, लेकिन जाना तो घर वापस जाना चाहती है और वो ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहती है लोगों को कि वो आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप चाहते हैं कि दो से और चार बातें हो जाएं। तो भाई आपके लिए गाना, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक विद मी ऐसे वन टू वन तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल। ऑन दैट नोट, गुड नाइट।
1: क्या कहा?

0: 98.3 Mirchi. It's hot.
1: Oh, aankhon hi aankhon mein kar baatein gup chup gup chup gup chup hoy kus kus kus kus kus. Oh, khwabon ki nadi mein khaye gote gud gud gud gud gud gud hoy gud gud gud gud gud. Oh, आंखों ही आंखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप ओ कुस कुस कुस कुस कुस ओ वे ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़

नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: रात बड़ी है मस्तानी, तू दिलबर जानी कर ले गाला गुड़ियां।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। मैं गल्ला को गाला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेट गाला इज एवरीवेयर माई फ्रेंड। आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, कोई भी सोशल मीडिया खोल लीजिए, आपको सिर्फ अलग अलग कुट्योर नजर आएंगे, जो अगर गलती से आपकी मम्मी या पापा देख लें तो बोलेंगे कि हैं, ये क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है। तो चलिए हम भी मेट गाला डिस्कस कर ही लेते हैं, स्पेसिफिकली अबाउट ऑल द इंडियंस हु मेड इट टू द रेड कार्पेट दिस ईयर। सबसे पहले डेब्यूटांट करण जौहर की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने एंसेंबल में, जो कि मनीष मल्होत्रा ने बनाया था, उसमें रिनाउंड इंडियन पेंटर राजा रवि राम की पेंटिंग्स को दिखाया है, विच टुक अबाउट 2064 आवर्स टू मेक, यानी 86 दिनों में कंप्लीट हो पाया था उनका ये कॉस्ट्यूम। वैसे बहुत सारे नॉट सो फैशन प्रेमी जो है ना, वो इनके इस लुक को बोल रहे हैं कि भाई रेड कार्पेट पे खुद कार्पेट बन के चले गए थे। बट आई डिफर फ्रॉम दैट, आई रियली लव्ड व्हाटएवर ही वाज वेयरिंग। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: कॉन्टेंट इज ग्रेटर देन मसाला।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब देखो यार, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जब बात होती है तो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ही आता है हमारे दिमाग में। इनफैक्ट हम अगर फिल्मों को सोचते हैं तो उसमें बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा एक्शन, इंटेंस इमोशंस, ये सारी चीज़ें ढूंढते हैं। इनफैक्ट हमें दिखता भी है। बट इन द रीसेंट टाइम्स बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठाया है अपने फिल्मों के थ्रू दैट हैव नॉट ओनली क्रिएटेड अवेयरनेस बट हैव ऑल्सो एंडेड अप इन्फ्लुएंसिंग पीपल। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों की बात कर रही हूँ। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट शुभ मंगल ज्यादा सावधान, डायरेक्टेड बाय हितेश केवलिया, स्टारिंग आयुष्मान खुराना एंड जितेंद्र कुमार इन लीड रोल्स। वेल, द मूवी रिवॉल्व्ड अराउंड टू मेन इन लव, डेल्ट विद होमोफोबिया बेसिकली। एंड इस फिल्म में इक्वल अमाउंट ऑफ ह्यूमर भी था, ड्रामा भी था, बट इट गेव अ बिग नज टू आवर सोसाइटी कि हम एज ह्यूमंस हर इंसान को वो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें रादर दैन categorizing them into a particular section. An intriguing movie to watch for sure. Moving on in the list, number 3 pe let's talk about Lamhe. Ye film aayi thi in the year 1991 starring Shridevi and Anil Kapoor in the lead roles. Kahani basically. And is film mein equal amount of humor bhi tha, drama bhi tha, but it gave a big nudge to our society ki hum as humans har insaan ko wo jaisa hai usko waise hi accept kare rather than categorizing them into a particular section. An intriguing movie to watch for sure. Moving on in the list, number 3 pe let's talk about Lamhe. Ye film aayi thi in the year 1991 starring Shridevi and Anil Kapoor in the lead roles. Kahani, moving on in the list, number 3 pe let's talk about Lamhe. Ye film aayi thi in the year 1991 starring Shridevi and Anil Kapoor in the lead roles. Kahani

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।

0: मसाला इज नॉट ऑलवेज आवर क्रेविंग।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मुशाय, मैं फिल्मों की बात कर रही हूँ यार, आप कहाँ खाने पीने के ख्यालों में खो गए। सो बेसिकली अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा एक्शन, इंटेंस ड्रामा और इमोशन भरा हुआ होता है। इन शॉर्ट, सब कुछ मसालेदार। बट हाँ, लीक से हटके बहुत सारी फिल्में बन रही हैं और आज पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों की बात कर रही हूँ। वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म बधाई हो भाई साहब। 2018 में आई थी ये फिल्म। अब सोचो आज की डेट में अगर आपको भी पता चलता है कि आपकी माँ प्रेग्नेंट हो गई है, ऐसी सी फीलिंग आपको अगर ना भी आए, आपके आसपास बहुत सारे लोगों में आप देखेंगे। एंड दिस इज व्हाट द मूवी डेल्ट अबाउट। बेसिकली इस फिल्म ने हमें बहुत सारे वैल्यूबल लेसन्स दिए हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सिखाया है कि हमें इलॉजिकली अपने पेरेंट्स को कभी भी जज नहीं करना चाहिए। बेसिकली इस कहानी में जिस तरीके से पेरेंट्स के बीच के प्यार और अफेक्शन को दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि भाई वो भी ह्यूमंस हैं, उनके अंदर भी भावनाएँ होती हैं और भावनाओं में वो भी बह जाते हैं। दैट इज एब्सोल्यूटली ओके, सो प्लीज डोंट मेक अ फस अबाउट इट। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है देन यू should definitely watch it. Yeah, moving on, number 5 pe let's talk about the film Kya Kehna. 90s kid hone ke nate mujhe ye film kafi zyada pasand hai, main bata sakti hu. And let's be honest, aaj bhi premarital sex aur pregnancy टैबू माना जाता है यार। इस कहानी में एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट किस तरीके से शादी के पहले प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वो क्या डिसीजंस लेती है अपनी लाइफ के लिए, इज व्हाट द मूवी टॉक्स अबाउट। एंड प्रीति जिंटा वाज जस्ट सो फ्लॉलेस इन इट। वेल, अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई फिल्म ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। इन द मीन टाइम एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी। इट्स हॉट।